ब्रज यात्रा को विश्राम देते हुए श्री वृंदावनेश्वरी, श्री राशेश्वरी, श्री हरिदासेश्वरी राधारानी के चरणों का ध्यान करते हुए मस्ती में झूमते हुए उनके नाम का कीर्तन करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सने बिहारी लाल की जय।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: गगन को डोर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कहना।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 11 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती

गया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम?
0: हाँ।
1: काम सीधा साधा है, नीना एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार तो

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: हाँ तो नैनों में
1: बिंदिया है,
0: माथे पे
1: बिंदिया है,
0: तो बालों में
1: गजरा है,
0: आँखों में
1: गजरा है।
0: ओहो।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: देखो हम पर शक ना लाओ, अब जो मिलना।
1: अच्छा जी,

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: अरे हे सूरदास का औलाद, तो क्या सुनाई नहीं पड़ा था हम कहा कहते हम कहा ठहरा करने को कहा गया गया?
1: हम ये बकवास सुनने नहीं आए हैं। हम यहाँ के राजा हैं और अब हम लौट कर आए हैं। हम राजा की तरह रहेंगे।
0: अरे हाई देखो इकालिया गैंडा के राजा की तरह रहेंगे, यानी अब हम तो हर प्रजा की तरह रहिए।
2: गोविंदा,
0: अरे गोविंदा नहीं जी, हवलदार बोलिए आप।
2: हवलदार साहब, लगता है दो डंडे देने ही पड़ेंगे।
0: हाँ ऐसा कहा,
3: दे दीजिए।
0: अरे रजवा का औलाद, इन्हें आओ रे, पुलिस का भाका नहीं समझता है क्या रे? हम पुलिस वालन का हंसना मना है, चलिए। अरे बगुआ
2: गोविंदा,
0: और हम तो के हुकुम देते हैं ई दारू का अड्डा बंद कर दे।
2: मगर दारोगा जी, हम दिन भर तो हर ड्यूटी बजाई, मगर रात को ये धंधा
0: बंद करो। बंद, हम कह दिया सो कह दिया। अरे दिन का बात नहीं है, रात का बात नहीं है, शराब पीना बुरी बात है तो शराब बंद का
4: बंद। लेकिन गोविंदा, नहीं नहीं हवलदार, नहीं नहीं दरोगा साहब, कल तो शिवरात्रि का दिन है।
0: अरे शिवरात्रि के दिन का बात हम कहाँ कहते हैं? अरे कल तो छुट्टी का दिन होते हैं, भांग पिया जाते का पिया जाते।
5: जो चिराग हमने जलाए वही चिराग हमारा घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं।
6: इससे पहले कि चिराग एक भड़कती आग बन जाए, उसे बुझा देना ही शुभ देती है।
5: जरा हम भी तो देखें उनकी लौ में कितनी गर्मी है।

Yeah.

0: गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
0: हाँ गुड नाइट।
1: अच्छा गुड नाइट।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: क्या है चित चोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चित चोर?
1: You sing like किशोर but शादी का दे.
0: Oh yes, September 8.
1: Oh, very late.
0: Darling, wait.

0: तू है बुलबुल
1: सच है बिल्कुल यू आर वंडरफुल
0: लग जा गले दुनिया जले छम छम छम छम छ छम छ छम हे गर्ल हम तुम पे दिल निसार करता है रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है रोज

ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार थीम चॉइस शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ऑफ द वीक में सुनिए दिए गए स्टार मेहमान पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन, आ चुका हूं लेकर आज का बहुत ही प्यारा शो स्टार थीम चॉइस। और आज के स्टार थीम चॉइस के जो शब्द हैं, उन शब्दों का नाम है आवारा, पागल और प्रिया और प्रिय, हम सफर, सनम, वलमा, आशिक, सोना, मुंडा, कुड़ी और गोरी। इन शब्दों से आप गाने अभी भेज सकते हैं रेडियो हॉटस्टार के सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से। फिलहाल मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए। आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

बिल्कुल, ये प्यार ही तो है, क्योंकि आप सभी यहाँ पे हाजिर हैं। सभी का वेलकम वेलकम वेलकम, खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। फिलहाल मैं इस बार जो से बहुत से दोस्त जुड़े हुए हैं, सभी से मैं सभी का वेलकम करता हूँ। सबसे पहले जुड़ने वाले हमेशा की तरह हमारे सरफ भाई सरफराज पटेल जी साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं। रंजीत कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है रंजीत कुमार जी। काजल झक्का जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं काजल झक्का जी, सीतामढ़ी बिहार से। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है एमपी से। और जुड़ने वाले दोस्तों में नाम शामिल है हमारे आरिफ सिंधे जी की, फिलहाल ये है यानी कि चेन्नई तमिलनाडु में है, तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। वैसे हैं गांधी नगर गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन अभी यानी कि चेन्नई, वहाँ चेन्नई का सफ़र कर रहे हैं। और जाकिर खान जी जुड़ चुके हैं जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। बीरबल बघेल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और सर्वेश भगत जी हैं, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। राधे राय जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है राधे राय जी। और संध्या पटेल जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है दीदी आपका, गोया यानी कि गोवा से है, ओके। और संदीप सुतार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है संदीप सुतार जी महाराष्ट्र से। और महेश जी जुड़ चुके हैं, महेश जी वेलकम करते हैं आपका भी। और असलम राना जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम सलाम, तो सभी का वेलकम करते हैं। और सबसे पहला जो आज मैं गाना लेके आप सबको सुनवाने वाला हूँ, असलम राना जी का है, क्योंकि यहीं से मैं यानी कि प्यार की शुरुआत करता हूँ। इंजॉय करता

0: तो बिल्कुल मैंने यानी कि प्रेम का श्री गणेश ने कर दिया है और फीडबैक भी मेरे पास आ चुका है। सर्वेश भगत जी का क्या कहते हैं?
1: आरजे अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। एमडी असलम राणा जी अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी, और यहाँ पे सुनील कोंडे जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सुनील कोंडे जी आपका भी, और मनीषा शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं मनीषा शर्मा जी आपका भी, और बीरबल बहेगल जी लिखने के बाकी आपको खूबसूरत अंदाज है, मजा आ गया इस गाने का। फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो हमारे राजेश कुमार जी का शायद है, और वो सुनना चाहते हैं मैंने दिल का हुक्म सुन लिया। तो राजेश कुमार जी गाना तो सच में मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: मंसार जी, हमको थोड़ा कंफ्यूजन है, राकेश कुमार जी है कि राजेश कुमार जी है? कोई भी भाई दोनों में है, अपना गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: राजेश कुमार जी थे और यानी पिकुर लिखते हैं कि मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, गाना प्यारा लगा है। और अशोक पाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। संजय पंडित जी के सुपर सॉन्ग सुनने कर मिला, मजा आ गया है। और हमारे बीरबल बघेल जी के बहुत खूबसूरत गाना, भाई साहब की पसंद। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करूंगा दो दोस्तों की, एक इसमें शामिल हो रहे हैं, मैं बता दूं कि नाम है उनका शेर सिंह इंसानी जी और दूसरे हैं अशोक पाल जी, तो दोनों की एक ही पसंद है। और ये गाना है बस इन प्रेमी आशिक आवारा, बिल्कुल अब जो भी नाम दीजिए भाई वो मुझे पसंद है।

0: जी,
1: शेर सिंह सैनी जी और एक भाई और भी है, दोनों भाई का मिलीजुल फरमाइश में शामिल किए। दोनों भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे पिकुरा लिखने के ये प्रेमी आशिक आवारा वाला गाना मुझे अच्छा लगा। आर्य सिंह जी लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की मिली जुली डिमांड मुझे बहुत ही पसंद आई है, दोनों को धन्यवाद। और शेर सिंह सैनी जी लिखते हैं कि थैंक यू अमन सर जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना लगा है मुझे। और नंदलाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, गाजीपुर यूपी से। और नंदलाल जी आपका कौन सा गाना है, जरा सा लिंक भेजेगा तो मेहरबानी होती है।
2: वाह, आदरणीय अमन सर जी नमस्कार। और इस वक्त इस बेहतरीन प्रोग्राम में अशोक पाल जी की फरमाइश बहुत ही शानदार है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई अशोक पाल जी गाना सुनवाने के लिए, आपका शुक्रिया।
0: ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और फीडबैक देने के लिए। अगला जो डिमांड है वह रंजीत कुमार जी का है, सुनना चाहते हैं बहुत ही प्यारा गाना, फिल्म

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं और शामिल करता हूँ रंजीत कुमार जी, देते हैं बहुत ही बेहतरीन गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और विजय कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है विजय कुमार जी आपका भी। सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: आरजे मन सर।

0: वेलकम वेलकम रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे और मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं यहाँ निशान देवल जी के बहुत ही प्यारा गाना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और लखन वाला कार्ड जी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत वेलकम है भाई लखन वाला कार्ड जी और बीरबल जी लिखते हैं सुपर ओके जी फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं
1: आरजे अमन सर जी रंजीत कुमार जी अपने गाने में शामिल किए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको भी धन्यवाद देते हैं थैंक यू सर
0: वेलकम जी आपका भी और यहाँ पे त्रिपुरा जी लिखते हैं बोल बोल कुछ क्या चाहिए गाना अच्छा लगा है और अशोक पाजी लिखते हैं थैंक यू अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए संध्या जी लिखते हैं कि क्या गाना चल रहा है और यानी कि जुड़ चुके हैं यानी प्रकाश जी वेलकम है प्रकाश जी आपका भी और विष्णु चंद्र जी जुड़ चुके हैं आपका भी वेलकम है अगला दिमाग है दो दोस्तों की अवधेश कुमार जी का है और अवधेश कुमार जी के साथ साथ निशांत राय बोले जी है ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे निशांत राय बोले जी का अलग से गाना आ जाए जब भी आता है तो किसी ना किसी के साथ ही आते हैं चलिए इंजॉय कीजिए इस प्यारे से गाने को।

0: बिल्कुल मुंडा गोरा रंग देखकर तो भाई दीवाना होगा ही क्यों। और रंजीत कुमार लिखते हैं सर जी गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं आपको। और यहाँ हुकुम चंद जांगड़ जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है हुकुम चंद जांगड़ जी। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद सर जी इतना प्यारा गाना सुनाने के लिए। और अभ्यास कुमार लिखते हैं कि थैंक यू मंजी गाना मेरा प्ले करने के लिए। निशान राय वही लिखते हैं कि मेरा भी गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। और पिकुरा लिखते हैं कि मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, गाना बहुत ही अच्छा लगा है। सोनू गौतम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी सोनू गौतम जी। और लिखते हैं एकदम झकास का जवाब गाना चल रहा है, फीडबैक सुनते हैं।
1: जय मान सर जी, दो भाई का मिलजुली फरमाइश में शामिल किए दोनों भाई को बहुत धन्यवाद देते हैं। आजकल हमारा सुजाति का बहुत आदमी सभी भाई इसमें आ गए हैं, बहुत है। अच्छा। जैसे शेर सिंह सैनी हुए, मलाकार हुए, भगत हुए, सब हम लोग का जाति का आदमी है।
0: अच्छा, क्या बात है,
1: धन्यवाद,
0: अच्छी बात है। और यहाँ पे शेर सिंह सैनी जी क्या कहते हैं सुनते
2: हैं। आरजे अमन सर
0: जी, जी
2: आपको दिल से धन्यवाद, और अवधेश जी ने हमें शामिल किया गाने में, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वेलकम है भाई शेर सिंह सैनी जी आपका। और एम ताहिर साहब जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और सभी साथियों को नमस्कार कह रहे हैं। और अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ, ये डिमांड किन गया भाई देखता हूँ। ये है यानी बिंदिया जी के, सुनना चाहते हैं ये गाना, इंजॉय कीजिए बिंदिया जी।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बनाता है। और बिस्कुट जी लिखते हैं, गाना मुझे अच्छा लग रहा है और सर्वेश सागर जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: जय अमर सर जी, बिंदिया जी अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। और यहाँ पे बिरबल भगत जी लिखते हैं शानदार गाना चल रहा है। और एम ताहिर जी लिखते हैं कि सर जी आने सर्वेश भगत जी का हॉट स्टार में बड़ा एहसान है उनकी यानी कि लगन का। जी बिल्कुल, जब से सुनते हैं लगातार फीडबैक देते रहते हैं। अगला डिमांड मैंने गोविंदा खंडाड़े जी का मैं प्ले करने वाला हूँ। और गोविंदा खंडाड़े जी इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और मेरे पास राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है राजेश कुमार जी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, इनकी सुन लेते हैं।
1: अजय अमन सर जी, गोविंदा खंडाले जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी गोविंदा खंडाते। ओके, अपनी कुराई लिखते हैं सुपर सॉन्ग है ये, बागी मूवी का मजा आ गया सुन के। विष्णु जी लिखते हैं कि अच्छा ओके, हाँ भेज सकते हैं दोबारा, नो प्रॉब्लम। और दीपक जी क्या कहते हैं,
2: अमन जी आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा जा रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया गाने सुनने को मिल रहे हैं, पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो बोलने की स्पीड है वो अभी से ही बहुत तेज़ हो गई है, जो कि 9 बजे के बाद होती है। तो आप इतनी स्पीड से जल्दी जल्दी प्रोग्राम निपटा रहे हो, क्या जल्दी जाने का इरादा है, आप बताइए। मैं दीपक अकबर सीनीमालवा मध्य प्रदेश से।
0: जी जी मैं आपको बता रहा हूँ, इधर बारिश का मौसम यानी कि लगातार बारिश हो रही है, और अभी मम्मी जी का कॉल आया था, जैसे मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि जल्दी घर आ जाओ क्योंकि यानी बारिश ये रुकने वाली नहीं है, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं भींग कर आ जाऊँगा, तो बोले कि नहीं जल्दी प्रोग्राम खत्म करके जल्दी आओ। मैंने कहा कि ठीक है मैं जितना जल्दी कोशिश करता हूँ उतना जल्दी जल्दी प्रोग्राम को ख़त्म करके आने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो फिलहाल भींग कर ही जाना पड़ेगा मुझे जैसा लग रहा है। और इधर थोड़ी सी मतलब क्या बोलते हैं उधर यानी कि महावीर अखाड़ा वाला यानी कि जुलूस वाला यानी मेला भी लगा हुआ है, तो थोड़ा सा कुछ हो सकता है इसलिए मैं जल्दीबाजी में हूँ थोड़ा। और गोविंदा खंडाले जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरा गाना प्ले करने के लिए। और हमारे ये रंजीत जी लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम मुझे अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो संदीप सुतार जी का मैं प्ले करने वाला हूँ।

0: ऐसा प्रेमी फिर ना मिलेगा। दोरी दो दोरी फिर न कहना आवाज न दी।
1: वेलकम है कॉमरेडी हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना देगा। मैं जी देंगे हाँ हाँ बिल्कुल भेज देता हूँ ना। और ये फीडबैक
2: अर्जे अमन सर जी संदीप सुतार जी अपने गाने में शामिल किए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर।
1: वेलकम जी आपका भी। और बीरबल जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग चल रहा है। पिकुरा लिखते हैं गोरी और गोरी गाना मुझे अच्छा लगा। अगला जो डिमांड है आमना खान जी का मैं प्ले करने वाला हूँ। सलामी इसका एंजॉय कीजिए आमना खान जी।

0: और आमना खान जी लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आर्जमान जी, हम भी जुड़ गए हैं और थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और बीरबल बघेल जी लिखते हैं कि शानदार गाना चल रहा है और फीडबैक सुनते हैं, क्या कहते हैं सर्वेश जी?
1: अर्जमान सर जी, आमना खान जी अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी, अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ अभिषेक तिवारी जी का प्ले करने वाला हूँ।

0: बिल्कुल पागल हुआ, दीवाना हुआ। और यहाँ पे हम यानी कि नंदनी माँ जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं माँ जी आपका भी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: जय अमन सर जी, अभिषेक तिवारी जी अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और पी गुराज जी लिखते हैं कि ये क्या हुआ गाना, मुझे बहुत अच्छा लगा है। विष्णु जी लिखते हैं कि ओके, फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो हमारे अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम पाटिल जी की डिमांड है, तो सुना रहा हूँ, इंजॉय कीजिए इनके गाने को। लेकिन फिलहाल इस ऑडियो को सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, सुशांत दया नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है लहू के दो रंग, और गाने का बोला है आवारा पागल दीवाना दुनिया से बेगाना, ये गाना है। और स्टार जो सबको दीवाना बनाते हैं, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरत जंदा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, बरकिशोर भगत, आनंद शेखर, कुमारी सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद देवनू जी, संतोष कुमार जी, मुन्ना जी, आरजे अमन सर जी, सुंदरता की मूरत जी, आरजे वंशिका जी, आरजे आकांक्षा जी, आरजे एम एस परमार जी, आरजे आदित्य जी, आरजे सोनी जी, आरजे रत्ना जी, और सभी आरजे, और सभी भाई, और सभी बहन, और सभी लिसनर इसमें शामिल हो, सभी को

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और यहाँ पर रंजीत जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन लाजवाब गाने के लिए बहुत बहुत सभी को धन्यवाद देते हैं। और पिकुरा जी लिखते हैं कि आवारा पागल दीवाना गाना सुपर से ऊपर हिट लगा है। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, इनकी हम सुन लेते हैं ना।
1: अर्जे मसर जी धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। हमारा तीन भाई का फरमाइश, हमारा अशोक देशमुख, आत्माराम पाटिल जी आप अपने प्रोग्राम में शामिल कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।

0: वेलकम बैक। और यहाँ पे एनपी गुड़ा जी लिखने का आवारा पागल दीवाना, मुझे गाना सुपर हिट लगा है। और ये फीडबैक सुनते हैं शेर सिंह सैनी, क्या कहते हैं?
1: आरजे अमन सर, सर्वेश भगत जी की बहुत लाजवाब सॉन्ग इन्होंने हमें गाने में शामिल किया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।
0: वेलकम जी आपका भी, शेर सिंह सैनी जी आपका, और आत्मलाम पटेल जी भी क्या कहते हैं?
2: हेलो प्यारे आरजे अमन खान सर जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, सत्यन, नमस्कार नमस्कार
0: नमस्कार।
2: मैं आत्माराम पाटिल आज के दिन में सर मुझे,
0: अच्छा हाँ आपका गाना तो प्ले हो चुका है, सॉरी ये प्ले करना है।
2: शुक्रिया अमन खान सर जी, आपने हमारा सॉन्ग तीनों भाई का चला दिया। मैं आत्माराम पाटिल लिया बुलढाणा महाराष्ट्र से। ओके जी
0: मैं आपका उल्टा गाना प्ले, सॉरी उल्टा ऑडियो प्ले कर देता, सॉरी इसके लिए फीडबैक।
3: धन्यवाद अमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा गीत पसंद करके सभी दोस्तों ने फीडबैक दिए, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। निम्बरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी आपका भी, अशोक देशमुख जी। और ये क्या कहते हैं रंजीत जी?
4: आदरणीय सर्वेश भगत जी अपने गाने में शामिल किए, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रंजीत कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से।
0: ओके जी, और यहाँ पे अजय निरंकारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सहारनपुर से। और आरिफ सिंधी जी क्या कहते हैं?
5: अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम पाटिल जी, मिलीजुली फरमाइश बहुत ही शानदार सुनवाने के लिए शुक्रिया। अमन सर जी आपने मुझ तक पहुंचाई, उसके लिए आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी तमिलनाडु चेन्नई से, सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार आरजे अमन सर जी के साथ, जो दीवाना बना दे।
0: धन्यवाद देते हैं आपको फीडबैक देने के लिए। और रवि लोधी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। रवि लोधी जी लिखते हैं कि आवारा पागल दीवाना, मुझे गाना बहुत अच्छा लगा है। और हम भी जुड़ चुके हैं, और अगला जो डिमांड है मैं प्ले कर रहा हूं एम ताहिर जी का।
6: मन खान सर, अस्सलाम वालेकुम। और सर कैसे हो?
0: बहुत अच्छे हैं, आप बताइए।
6: जी सर, सर आज आपके इस खास शो के जरिए मैं फिल्म इंतहा का एक गाना, मुझे एक हमसफर चाहिए, दिल के किसी कोने में बसे उस अनकहे अधूरे एहसास के नाम, मेरी जानिब से जो हर पल एक खामोश और प्यारे ठहराव की तरह साथ रहता है और इस बहती धुन में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है, तो आप मुझे ये गाना सुना दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। और ये गीत मेरी जानिब से सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूर्त के लिए, और सर जी और खास करके कायनात जी के लिए, और हमारे दोस्त हैं सोनू गौतम जी और सुनील कुमार जी बांके बिहार वाले, और साथ ही साथ जो इस समय लाइव आपका शो सुन रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे साथी, उन सभी को मेरी जानिब से ये गीत डेडिकेट है। शुक्रिया सर।
0: ओके, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

0: गाना है। लगता है ये गाना तो हमारे आज के यानी कि सॉन्ग ऑफ द डे विनर बनने के लायक है। बिल्कुल बधाई हो, आज आपको एक और गाना सुन सकते हैं। वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं और शिल्पा बहन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं शिल्पा बहन जी आपका भी। और काजल झाका जी लिखते हैं कि गाना सच में बहुत ही प्यारा प्यारा लग रहा है, मजा आ रहा है सुन के, धन्यवाद देते हैं सभी को। और सर्वेज भगत जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: अरजय अमन सर जी, एम ताहिर जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे बीरबल भगत जी लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत गाना है जी। और अजय नकारी जी लिखते हैं कि हम सफर चाहिए उम्र भर चाहिए गाना, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, शानदार, किसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिकू राय लिखते हैं कि सुपर से भी ऊपर वाला सॉन्ग है, धन्यवाद। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि अमृत आयर जी की पसंद और उन्होंने हमें अपने गाने में शामिल किया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और रूपचंद गोयल जी यहाँ पे जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि मस्त सॉन्ग चल रहा है। एम ताहिर जी लिखते हैं अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है, और दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे शेर सिंह सैनी जी लिखते हैं कि एम ताहिर जी की पसंद बहुत अच्छी लगी, उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ वो काजल झक्का जी का है, सुना चाहती हैं मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करते, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: बिल्कुल, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो सिर्फ तुमसे करता है और फीडबैक भी शामिल करता है।
1: आरजे अमन सर जी, काजल झा जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे यहाँ लिखते शिल्पा बेन जी के मेरा दिल भी कितना पागल है और हम सफर चाहिए, दोनों गाने बहुत ही प्यार लगे हैं। सोनू गौतम जी लिखते हैं कि मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। इस पर लाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और बीरबल वगैरह जी लिखते हैं वाह क्या शानदार गाना है, अगला जो डिमांड है नंदलाल जी का है।
2: नमस्ते अमन सर, गुड इवनिंग, मैं नंदलाल यादव गाजीपुर यूपी से। सर थीम चॉइस पर एक मेरा भी गाना है और गाने के बोल है

सर, गाना आपको और सुंदरता की मूरत को और जितने मेरे दोस्त सुन रहे हैं सभी के लिए गाना डेडिकेट रहेगा सर। धन्यवाद।

0: बिल्कुल सनम, हम तुमसे प्यार करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। और काजल झका जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और ये फीडबैक
1: आरजे अमन सर जी, नंदलाल यादव जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे इनपी को लिखते हैं कि गाना मुझे एक नंबर लगा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। अजय निरंकार जी लिखते हैं कि खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है, शानदार शानदार गाने प्ले हो रहे हैं, रेडियो हॉट जो दीवाना बना रहे हैं। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि अमन भाई आज का भी प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि गाना सब में बहुत बढ़िया बढ़िया और शब्द भी बहुत बढ़िया बढ़िया है। अच्छा, और यहाँ पे क्या नाम है, शेर सिंह सैनिक लिखते हैं कि ये दोस्तों की सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे बज रहे हैं, ईश्वर आज लिखते हैं सुपर सॉन्ग। अगला जो डिमांड है हमारे सर्वजीत शेट्टी जी का है, सुना चाहते हैं मैं तेरे प्यार में पागल, इंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल, मैं तेरे प्यार में पागल और क्या ही बताऊं। फिलहाल फीडबैक मेरे पास आए हुए बहुत सारे, शामिल करता हूं मैं। पहला तो ये,
1: आरजे अमा सर जी, सर्वजीत सेट्टी जी अपने गाने में शामिल किए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ ईश्वर आज लिखते हैं, वाह क्या गाना है, सुनकर मजा आ गया एकदम। और अवधेश कुमार जी लिखते हैं कि अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। तो और यहाँ पे बिरबल बघेल जी लिखते हैं कि वाह वाह वाह क्या गाना है, सुन रहे हैं। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि मैं तेरे प्यार में पागल, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, लाजवाब लगा है। और पिकुराई लिखते हैं कि ये गाना तो मेरा फेवरेट गानों में से एक है, मजा आ गया सुन के। और ये फीडबैक सुन लेते, क्या कहते हैं नंदलाल जी?
2: सर जी, मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने मेरे दोस्त फीडबैक दिए हैं, तहे दिल से शुक्रिया उन लोगों को, धन्यवाद सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और अनिल मेहता जी कहते हैं बहुत ही लाजवाब गाना चल रहा है, मजा आ रहा है सुन के। और सोनू गौतम जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
3: जब जब तू छुप जाती है,
0: अच्छा जी,
3: इन फूलों की गलियों में
0: है।
3: और चटकने लगती है कितनी कलियां कलियों में। सरबजीत सेठी जी की पसंद एकदम लाजवाब लगी, उन्हें दिल से धन्यवाद देते हैं इतना अच्छा गाना सुनवाने के लिए, थैंक यू।
0: वेलकम वेलकम वेलकम। और यहाँ पे यानी कि विकास विकास गडकरी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। और नंदरी मालिक ने किया

जी को, आरजे परमार सर जी को, आरजे सोनी जी को, आरजे आकांक्षा जी को, आरजे रत्ना जी को, आरजे आदिति जी को और रेडियो हॉट स्टार सुनने वाले सभी मेरे प्यारे दोस्तों को मैं आरिफ सिंधी शुक्रिया।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं, शामिल करता हूं मैं। और सरगज भगत जी क्या कहते हैं, पहले इन्हीं को सुनता हूं।
1: जय मनसा जी, आरिफ सिंधे जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे बीरबल भगत जी लिखते हैं, वाह क्या खूबसूरत गाना है भाई, आरिफ जी आपकी पसंद लाजवाब, धन्यवाद देते हैं आपको। और अवधेश कुमार लिखते हैं कि सोनू गौतम जी की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, उनकी बहुत आवाज़ प्यारी है। और सर और शेर सिंह सैनी जी लिखते हैं कि ये तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। मनीषा शर्मा जी लिखते हैं कि सुपर से ऊपर मेरा फेवरेट सॉन्ग है, थैंक यू सो मच सुनाने के लिए आरिफ जी। ये फीडबैक सुन लेते हैं। फिर से जरा
2: शुक्रिया आरजे अमन सर जी, मेरी पसंद का गाना प्ले करके मुझे सुनवाया, और जो दोस्तों ने फीडबैक दिया उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी, सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार आरजे अमन सर जी के साथ, जो दीवाना बना दे।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और इसकी पूरा लिखते हैं कि तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरे रे, गाना सच में आग लगा दिया है। और शिल्पा भी लिखते हैं कि तेरे इश्क में पागल हो गया, गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। सोनू गौतम जी लिखते हैं कि आरिफ जी की पसंद मुझे बहुत ही लाजवाब लगी, उनको धन्यवाद देते हैं इतना अच्छा गाना सुनवाने के लिए। और ईश्वर लाल जी लिखते हैं कि झक्कास गाना है। अगला जो डिमांड है वो हमारे दीदी यानी संध्या पटेल जी का है, सुनना चाहती हैं तू पागल प्रेमी आवारा।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बनाते हैं। मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं। आरिफ जी लिखते हैं कि ये संध्या पटेल जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए। और सरोज भगत जी क्या कहते हैं?
1: अजय अमर सर जी संध्या पटेल जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका। और सरोजीत जी लिखते हैं कि अमन जी धन्यवाद मेरा गीत प्ले करने के लिए, और सभी दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। ईश्वरलाल जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग चल रहा है। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ये तू पागल प्रेमी आवारा गाना मुझे बहुत बढ़िया लगा है। और ये फीडबैक।
2: गुड इवनिंग अमन सर जी, तू पागल प्रेमी आवारा दिल तेरी मोहब्बत का मारा, संध्या पटेल जी का सॉन्ग बहुत बढ़िया लगा, इनको धन्यवाद देते हैं, आपके प्रोग्राम में हम भी शामिल हो गए हैं।
0: जी वेलकम करते हैं आपका भी। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि तू पागल प्रेमी आवारा दिल तेरी मोहब्बत का मारा, इतना खूबसूरत गाना सुनाने के लिए ये कविता की स्मृति की आवाज में धन्यवाद देते हैं। और महेश जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
3: नमस्ते अमन सर जी, मेरा गाना प्ले कर दीजिए।
0: आपका कौन सा गाना है जरा मुझे बता दीजिएगा। और एनपीपुरा जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है। अगला जो डिमांड है दो दोस्तों के हैं, एक हमारे सोनू गौतम जी हैं, सोनू गौतम जी के साथ साथ हैं हमारे दीपक कुमार गायकवाड़ जी। तो दीपक कुमार गायकवाड़ की ऑडियो आई हुई है, सुनवाते हैं।
4: नमस्कार अमन जी, कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छे हैं।
4: रेडियो हॉट स्टार सुनने वाले सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे रेडियो हॉट स्टार के सभी आरजे जो इतनी मेहनत करते हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हो। रेडियो हॉट स्टार का परिवार इस तरह आगे बढ़ता रहे और हम लोग अच्छे अच्छे गाने हमारी फरमाइश भेजते रहें और हमारी पसंद पूरा करते रहें आप। और आज मेरी जो पसंद का गाना है, फिल्म का नाम है सनम रे और इसका टाइटल सॉन्ग सुना दीजिए। मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा मध्य प्रदेश से, धन्यवाद।
0: ओके जी, एंजॉय कीजिए दोनों दोस्तों की पसंद का ये गाना।

0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मेरी डार्लिंग जी, सारी जन्म तो आप ही के साथ बिताना है ना। और अनिल मेहता जी, वाह क्या गाना है, मजा आ गया सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इतना प्यारा डिमांड के लिए। और सरबत भगत जी क्या कहते हैं, इनकी सुनते हैं।
1: हरदयामा सर जी, दीपक कुमार गायकवाड जी अपने गाने में शामिल किया, एक भाई और भी हैं, दो भाई का मिलीजुली फरमाइश में शामिल किया, दोनों भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे इस पर आज लेते हैं सर जी, ओके। और यहाँ पे यानी कि शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ये सनम रे गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और अवधेश कुमार जी लिखते हैं कि सोनू गौतम जी गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, सनम रे थैंक यू सो मच सुनाने के लिए। और दत्ता कदम जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं दीपक कुमार गायकवाड़ जी सोनू गौतम जी का गाना मुझे बहुत पसंद आया है। और बीरबल बघेल लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन गाना है, दोनों को धन्यवाद देते हैं। और पिपराय लिखते हैं कि सनम रे गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, थैंक यू सो मच। और एम तहर जी लिखते हैं कि सोनू गौतम जी के पसंद सनम रे, ये प्यार की मासूमियत और पुरानी यादों से भरा एक बेहद खूबसूरत नगमा है जो दिल के बहुत करीब उतरता है। और शो में ऐसे कमाल के गाने की फरमाइश इन्हें करना दिखता है कि उनकी पसंद कितनी उम्दा और दिलकश है। इस गाने का हर एक बोल दिल की गहराई और उस खास इंसान के साथ होने का एहसास को बयां करता है। आपकी इस फरमाइश ने न सिर्फ रेडियो शो की रौनक बढ़ा दी है बल्कि ये साबित कर दिया है कि बेहतरीन मौसमी धुनों और सच्चे जज्बातों की समझ आपको कितनी बखूबी है। अरे है क्या बात है, बहुत लिखते हैं आप। मनीषा शर्मा जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी क्या कहते हैं,
2: अमन जी कूलर का लगा करंट तो मैं झटका खा गया। अच्छा। और जैसे ही करंट लगा मुझे रेडियो हॉट स्टार का, तो मैं रेडियो हॉट स्टार से चिपक गया चिपक गया चिपक गया। ऐसी लागी लगन कि रेडियो हॉट स्टार सुनकर हो गए सब मगन। मेरा गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी सुनने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक गायकवाड़ सीनी मालवा मध्य प्रदेश से।
0: वेलकम जी दीपक कुमार गायकवाड़ जी। और निशांता बोल लिखते हैं कि गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इतना प्यारा गाना सुनाने के लिए। सोनू गौतम जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि भीगे भीगे ये पलकों से ये वाला गाना मुझे बेहतरीन लगा है। अगला जो डिमांड है मनीषा शर्मा जी का है, ये ओल्ड इज गोल्ड का गाना, आई हुई है इंजॉय।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और यहाँ पे सुरेश भगत जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं इनकी।
1: जय मां सर जी, मनीषा शर्मा जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे मनीषा जी लेते हैं, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद। और इस वाला जी लेते हैं ओल्ड इज गोल्ड, गाना बहुत ही प्यारा लगा है। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ जाकिर खान जी का, सुना चाहते हैं भोजपुरी सॉन्ग हेलो प्रिया है, एंजॉय कीजिए।

0: दूंगी, हाथों गोड़ पूरा तुरवा दूंगी, खोपड़ी हमारा तू गरम कर दिया है।
1: हेलो, सही बोलो ना, प्रिया है?

0: लगता है तूने मुझे छीन लिया है, प्रिया का मोबाइल तूने छीन लिया है। बतिया हमारा कहे मानती नहीं, बढ़िया से मुझे पहचानती नहीं।
1: बोलेगा जादे, मारेंगे तबरा के कनपटिया झनझना जाएगा।

0: तोहार क्रिया हमार जान है प्रिया।
1: ये बताओ उसके लिए तूने क्या किया है?
0: अरे जिसे तुम बतिया रही हो मोबाइलिया हम ही ने दिया है, बोलिए ना प्रिया है।
1: हाँ तो लो
2: वेलकम बैक रेडियो राजू और दीवाना अपना दिन। मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं और विकास गडकरी जी लिखते हैं कि यानी कि पुराना गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है और इस गाने को सुनकर मेरी माँ की याद आ गई। अच्छा नंदनी माँ लिखते हैं कि मनीषा जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही प्यारी पसंद थी उनकी। और आत्माराम जी क्या कहते हैं इनके सुनते हैं।
3: अमन सर जी ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग सुनकर मन बिल्कुल खुश हुआ सर जी।
2: अच्छा
3: ऐसे ही गाने हर दिन सुनने को मिलते हैं तो और भी खुशी होती है। शुक्रिया मैं आत्माराम पटेल, थैंक यू।
2: ओके जी और यहाँ पे सरोज भगत जी क्या कहते हैं इनकी भी सुन लेते हैं।
4: आरजे अमा सर जी,
2: जी
4: जाकिर खान जी अपने गाने में शामिल किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
2: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे सोनू गौतम जी लिखते हैं भोजपुरी गाना बहुत लाजवाब लगा, एकदम मजा आ गया सुन के एकदम। और यहाँ पे प्रियंका जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं प्रियंका जी आपका भी। और ईश्वरलाल जी लिखते हैं भोजपुरी गाना बहुत ही अच्छा लगा है। और यानी कि पिकू राय लिखते हैं कि हेलो प्रिया है वाला गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है। और शेष सिंह सैनी जी लिखते हैं कि भोजपुरी सॉन्ग तो बहुत ही अच्छा लगल है, एकदम दिल खुश हो गया है, गदगद हो गया है। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ये हेलो प्रिया वाला गाना मुझे बहुत हंसी आई है सुनकर। और राजीव तिवारी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं राजीव तिवारी जी। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो है एम ताहिर जी, चूँकि जो आज के इन विनर बने हुए थे और इन्हीं गाने में शामिल हो रहे ईश्वर और मेहर जी, दोनों की डिमांड एक ही है तो इन्जॉय कीजिए इस गाने को प्ले कर दिया मैंने।

बहुत से दोस्त भी गायब हो चुके हैं। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो लोग जो मतलब मेरे पुराने दोस्त हैं जो अभी तक नहीं सुन रहे हैं और मतलब वो अपने गाने की डिमांड भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो गाने की डिमांड करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा, यानी कि वो लोग हमेशा नहीं करते हैं मतलब, तो यानी कभी कभी गाने की डिमांड करते हैं, तो उनकी गाने की मैं जरूर यानी प्ले करने की कोशिश करूंगा। और जिनका वो यानी ग्रुप जो डिमांड होगी उसको भी मैं यानी प्ले करने की कोशिश करूंगा। और जिनके डेली गाने प्ले होती हैं उनके गाने कभी कभी प्ले हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो उसके लिए वो बिल्कुल नाराज नहीं होंगे, क्योंकि जो लोग हफ्ते में एक दिन करेंगे चाहे दो चार दिन बात करते हैं उनके भी गाने को शामिल करना बहुत जरूरी है।

वेलकम है रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना रहा है अनिल मेहता जी से। आज तो सभी गाने एक से बढ़कर एक प्ले हो रहे हैं, मस्त मस्त चल रहे हैं। बीरबल भगत जी से बात, क्या खूबसूरत भोजपुरी गाना था। हेलो प्रिया है, गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय आर्जी अमन जी नमस्कार, वेलकम है आपका भी गजानंद सरकार जी। और राहुल पाटिल जी लिखते हैं कि हेलो प्रिया है वाला गाना मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं इतना प्यारा गाने के लिए। और जाकर जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। अगला जो डिमांड है रूपचंद गोयल जी का है, सुनना चाहते हैं गोरी कब से हुई जवान, पन्ना ले जा अपने साथ, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम वेलकम रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं, पहला तो ये सुनते हैं सोनू गौतम जी।
1: कुड़ी कर गए सोला पार शहर में गल उड़ गए, मुंडियाना किया मार शहर में गल उड़ गई। कुड़ी कर गई सोला पार शहर में गल उड़ गई। एमडी ताहिर जी का गाना एकदम लाजवाब लगा अमन भाई, दिल से थैंक यू इतना अच्छा गाना सुनवाने के लिए।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे जुड़ चुके हैं यहाँ पे स्वरूप कुमार जी, बहुत बहुत वेलकम है स्वरूप कुमार जी आपका भी। और सर्वेश भगत जी,
2: आरजे अमन शाह जी, रूपचंद गोयल जी अपने गाने में शामिल कर उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और गोपाल शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। गोपाल शर्मा जी लिखते हैं सुपर से भी ऊपर वाला गाना है। अनिल जी लिखते हैं कि गोरी कब से हुई जवान, वह क्या गाना है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। दीपक कुमार गायकवाड़ जी क्या कहते हैं?
3: अमन जी पहले आपने गाना बजाया कि कुड़ी हो गई 16 साल की और उसके बाद गोरी कब से हुई जवान, क्या प्रोग्राम का आप गानों का क्या सेटअप करते हो, मजा आ गया दिल से, धन्यवाद। मैं दीपक गायकवाड़ सीढ़ी मालवा से।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं गोरी कब से हुई जवान, बना ले जा अपने साथ, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, लता मंगेशकर की आवाज़ में। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ये वाला गाना तो मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है। और राहुल पासी जी लिखते हैं गोरी कब से हुई जवान, ये वाला गाना बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं इस गाने को सुनवाने के लिए। और आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि सारे दोस्तों की डिमांड बहुत ही खूबसूरत लाजवाब है, सभी को शुक्रिया। ओके, अगला जो डिमांड है दो दोस्तों की है, एक इन महेश जी हैं इनका और अनिल मेहता जी हैं, दोनों की एक ही डिमांड है और सुनना चाहते हैं गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे।

0: अमन सर जी, अनिल मेहता जी और एक बहन भी है, दोनों कामिल बिजली फरमाइश से शाम के दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: थैंक यू आपका। और यहाँ पे सुनो गौतम जी लिखते हैं, दोनों दोस्तों की मेरी डिमांड बहुत ही अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं। अनिल मेहता जी लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी गाना प्ले करने के लिए। और अशोक बहन जी लिखते हैं, बुरी तरह गाँव बड़ा प्यारा गाना, बहुत अच्छा लगा। अगला जो डिमांड है वह हमारे इन विष्णु चंद्र जी का है, सुनना चाहते हैं अंगना में बाबा।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे बीरबल बघेल जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग चल रहा है और आत्मा जी क्या कहते सुन लेते हैं।
1: अमन सर जी
0: जी
1: बहुत बहुत अच्छा सॉन्ग आप पेश कर रहे हैं तो बिल्कुल मजा आ रहा है सर। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा
0: जी। ओके धन्यवाद देते हैं आपको भी। और राहुल पासी जी से गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा गाना मुझे अच्छा लगा है। और स्वरूप कुमार जी लिखते हैं कि और स्वरूप गौतम जी लिखते हैं कि ये खेत गए बाबा बजा गई माँ वाला गाना सुन के मजा आ गया जी। और गजानंद जी लिखते हैं गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा गाना मुझे बहुत पसंद है। और पिकू राय लिखते हैं कि अंगना में बाबा वाला गाना मुझे अच्छा लगा। अगला जो डिमांड है वो हमारे गजानंद सुरकार जी के ग्रुप का है, सुनवा दिए, एंजॉय कीजिए।

0: बाय द वे तुम्हें क्या करना है?
1: बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
0: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
1: रियली?

वेलकम वेलकम रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और यहाँ पे सेंसी सेनी जी लिखते हैं कि गाना सुनकर तो दिल खुश हो गया है एकदम। और दीपक जी लिखते हैं कि नहीं ओके। और यहाँ पे एनपी कुराय जी लिखते हैं कि ये कुड़ी कुवाड़ी वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और गजानंद जी लिखते हैं कि अमन जी को प्यार नमस्कार है, सभी साथियों गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। एक्चुअली देखिए रेडियो पर का गाना सुनने का मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि ये गाना सिर्फ आप नहीं सुनते हैं, आप दूसरों को सुनाने के लिए डिमांड करते हैं। और जो जो दोस्त जितना अच्छा से गाना आके डिमांड करता है समझिए उसने गाने के लिए मतलब मजा ही कुछ अलग होता है। अगला जो डिमांड है हमारे हुकुम जी का है। हुकुम चंद जी इंजॉय कीजिए अपने गाने को, इंजॉय कीजिए हुकुम चंद जी।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और यहाँ पे राहुल पासी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत ही पसंद है, धन्यवाद देते हैं। और हुकुम और यहाँ पे गजानंद लिखते हैं कि हुकुम चंद जांगर जी को पसंद शानदार लगी है। राजीव तिवारी जी लिखते हैं कि जवानी ऐश करांदे, वेरी नाइस सॉन्ग सुनने को मिला है, मजा आया है। सोनू गौतम जी लिखते हैं कि जवानी ऐश करांदे, गाना बहुत लाजवाब है, धन्यवाद देते हैं। और हुकुम जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद मुझे गाना प्ले करने के लिए। अगला जो डिमांड है और शिल्पा बेन जी की, और शिल्पा बेन जी सुनना चाहती है ये गाना।

बिल्कुल, ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे। और यहाँ पे पिकुरा जी लिखते गाना सच में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और सरोज जी लिखते हैं कि अरे भाई ये गाना नहीं हो सकता है ना, आज के थीम पर नहीं है ना। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये उन दिनों के बाद ही गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ हम अपने शाहिद अंसारी जी का। शाहिद अंसारी जी, इंजॉय कीजिए अपनी प्यारी सी गाने को।

0: इसी बात पगला गाना मैं प्ले करता हूँ इनका।
1: अमन भैया नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या। मैं सुनील कुमार बांका बिहार से, और आज की थीम चॉइस में मैं एक गाने की फरमाइश करना चाहूँगा। और गाने के बोल हैं, महबूब सनम मुझे तेरी कसम, ना देख मुझे ऐसी नज़रों से, कुछ कुछ होता है।
0: अरे बहुत
1: है, और ये गाना है। पहले तो आपको डेडिकेट है, और वंशिका जी को है, सोनू गौतम, प्रिंस पासवान, मुक्तिनाथ जी, और सतीश शर्मा जी, एम ताहिर जी, और रेडियो हॉट स्टार सुनने वाले सभी दोस्तों को मेरा ये गाना डेडिकेट रहेगा। धन्यवाद।

0: कुछ कुछ
1: वेलकम बैक और रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे और यहाँ पे शिल्पा बहन जी लेते हैं, थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, और शाही जी लेते हैं, थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद, और सौरभ कुमार जी लेते हैं कि गाना मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, महबूब सनम और दत्ता जी लेते हैं कि सुनील जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं। और
2: अमन भैया नमस्कार, शुभ संध्या, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से, और आपने मेरी पसंद का गाना प्ले किया तो उसके लिए आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, और सभी दोस्तों का शुक्रिया है फीडबैक देने के लिए।
1: वेलकम जी आपका भी, और राहुल पासी दिन से महबूब सनम को जिम्मे कसम गाना मुझे अच्छा लगा है, और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं सुनो।
3: महबूब सनम तुझे मेरी कसम, महबूब सनम तुझे मेरी कसम, यूं देखने ऐसी नजरों से कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। बहुत अच्छा सॉन्ग लगा अमन भाई
1: जी।
3: और सुनील कुमार जी ने हमें अपने गाने में शामिल किया, इसके लिए भी धन्यवाद।
1: वेलकम जी, और बीरबल बघेल लिखते हैं शानदार गाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और शिल्पा बहन जी लिखते हैं महबूब सनम वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। अगला जो डिमांड है वो हमारे दत्ता करम जी का है, सुनना चाहते हैं हद से ज्यादा सनम तुझसे प्यार।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे और फीडबैक में पता है। दाता जी ने बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: जय अमन सर जी, दत्ता कदम जी अपने गाने में शामिल किए हैं और सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल करते हैं। सभी को भी धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और राजीव तिवारी जी के चाहता हूँ तुझे हद से ज्यादा सुनम प्यार किया गाना बहुत ही अच्छा लगा है। और राहुल पासी जी के हद से ज्यादा सुनम तुझे प्यार किया बहुत ही प्यारा ये गाना लगा है, धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि दत्तक जी के पसंद मुझे पसंद रही है, बहुत शुक्रिया। वीरवर भगत जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और पिकुरा जी लिखते हैं कि हद से ज्यादा सनम तुझसे प्यार किया गाना मुझे बहुत प्यार लगा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और ये फिर
2: न समझा न

0: प्यारे किया। थैंक यू अमन भाई इतना अच्छा गाना सुनवाने के लिए, और पसंदकर्ता को दिल से धन्यवाद।
1: जी बिल्कुल, गाना तो सच में बहुत ही प्यारा था, मजा आ गया सुन के। और अनिकेत जी जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका अनिकेत जी और सर्वेश भगत जी। ओके, फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ।

0: देखता हूँ मैं, आते हैं।
1: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार थीम चॉइस शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ऑफ द वीक में सुनिए दिए गए स्टार मेहमान पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बज जाते रहो दिल से।
0: ओके, अगला जो डिमांड है वो हमारे यानी कि शिवम जी का है, और शिवम जी एंजॉय कीजिए गाने को।

सिर्फ मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए। और यहाँ पे दादाजी लिखते हैं कि शिवम जी का डिमांड मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और वीरवर बग्गा जी लिखते हैं कि गाना सच में बहुत ही शानदार है। और फिलहाल अगला जो डिमांड है मैं प्ले करूंगा, यानी कि विकास गडकरी जी का, सुनना चाहते हैं ए मेरे हम सफर, एंजॉय कीजिए।

बिल्कुल ऐ मेरे हम सफर, एक जरा इंतजार। वैसे गाना बहुत ही प्यारा था और बहुत सारे फीडबैक भी आए हुए हैं। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि मैं भी हूँ दीवाने, इसका नाम बस करे। अमन जी, उदित नारायण की आवाज में ये गाना सच में बहुत ही सुपरहिट लगा है, लाजवाब लगा है, धन्यवाद देते हैं। और पिपुर लिखते हैं कि ऐ मेरे हम सफर सुपरहिट पसंद है। और दत्ता जी लिखते हैं कि विकास गडकरी जी, आपका नाम, आपका गाना बहुत सुपरहिट है, ओके। और राजीव तिवारी जी लिखते हैं कि ये भी गाना बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये फिर

0: थैंक यू, ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग था अमन जी, शुक्रिया।
1: वेलकम किया आपका भी, और यहाँ विकास गडकरी जी लिखते हैं कि मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं। बिरबल जी लिखते हैं वाह क्या गाना है, मजा आ गया सुन के। राहुल पासी जी लिखते हैं कि अच्छा ये फिर

0: अमन भैया नमस्कार। और ये गाना जिस भाई साहब का भी है, मैं उनका नाम नहीं सुन पाया, लेकिन उनको दिल से धन्यवाद है इतना अच्छा गाना सुनवाने के लिए। और मैं सोनू गौतम भैया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि वो एक फीडबैक के लिए नए उभरते कलाकार सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो कभी भी अपनी फरमाइश में वॉइस मैसेज के द्वारा भी फरमाइश नहीं करते थे, लेकिन आजकल मैं उनको सुन रहा हूँ कि उनका फीडबैक वॉइस के रूप में बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी जी ओके। और यहाँ पे सोनू गौतम जी का भी इन वॉइस फीडबैक है, सुन लीजिए।

0: रिकी, थैंक यू अमन भाई इतना अच्छा सॉन्ग सुनाने के लिए, दिल से धन्यवाद।
1: वेलकम जी आपका भी। और ओके, अगला जो डिमांड है मैं प्ले करूंगा यानी प्रियंका जी का, और प्रियंका जी ये सुनना चाहती हैं किसी राह में किसी मौके, एंजॉय कीजिए।

0: पर। अमन भैया, प्रियंका जी का बहुत ही लाजवाब पसंद, और उनको दिल से धन्यवाद है इतना अच्छा गाना सुनवाने के लिए। मैं सुनील कुमार बांका बिहार से।
1: ओके जी, और राजीव जी लिखते कि आप सॉन्ग रिक्वेस्ट में भेज दीजिए, मैं कोशिश करूंगा। और विकास गडकरी जी लिखते हैं कि अब सभी दोस्तों ने बहुत अच्छा अच्छा फीडबैक दिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि प्रियंका जी की पसंद बहुत ही लाजवाब लगी है, हम बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद देते हैं, गाना सच में बहुत ही प्यारा लगा है। और ये पिकू राय लिखते हैं कि ये प्रियंका जी की डिमांड बहुत ही प्यारी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि मेरे हम सफर वाले गाने दोनों एक्सीलेंट लगे हैं, और ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं।
2: हेलो आदरणीय अमन सर जी, नमस्कार, और इस वक्त प्रोग्राम को सुन रहे मेरे एक एक श्रोता भाई बहन को भी बीरबल बघेल का प्यार भरा नमस्कार। आज बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा है अमन सर जी आपके माध्यम से, और आप खुद इस प्रोग्राम में गाने के साथ एक नए अंदाज में गुनगुनाते हुए चार चांद लगा रहे हैं, और हमारे श्रोताओं के एक से एक शानदार फीडबैक हम आपके माध्यम से सुन रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और गानों की फरमाइश का तो भाई मित्रों क्या कहना, आपके बेहतरीन फरमाइशी सॉन्ग हम इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो हॉट स्टार के माध्यम से, जो दीवाना बना दे। आपका बीरबल बघेल, भितरवार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। थैंक यू,
1: बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, वेलकम है। और इसी बात का अगला जो डिमांड है मैं आप ही का प्ले करने वाला हूँ, एंजॉय कीजिए। और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का फीडबैक लेने के लिए।

0: सॉन्ग बहुत बड़ा है, बाकी थैंक यू सॉन्ग सुना।
1: ओके जी, अब हमें लगा कि पूरा गाना आप ही गाइएगा क्या? अनिकेत जी कहते हैं कि अरे भाई कैसे हम आपको समझाएं, ये फीडबैक सुनते हैं।
2: बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंच सर जी, आपने मेरी पसंद का गाना प्ले किया, और भाई मित्रों आपने मेरी पसंद का गाना सुन करके जो एक से एक बेहतरीन शानदार फीडबैक आपने दिए, आपका दिल से शुक्रिया। आपका बीरबल बघेल भितरवार ग्वालियर मध्य प्रदेश से, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
1: वेलकम जी आपका भी, और प्रिया प्रिया गाना मुझे बहुत ही शानदार लगा है, धन्यवाद देते हैं बीरबल बघेल जी को, विकास कटकारी जी ने कि बीरबल बघेल जी का पसंद मुझे बहुत पसंद आई, धन्यवाद देते हैं उनको इतने प्यारे गाने के लिए। फिल्म दिल का गाना बहुत लाजवाब लगा है, थैंक यू बीरबल बघेल जी। और सुनील जी क्या कहते हैं, इनके सुनते हैं।

0: क्या कहूँ तुझे सनम। अमन भैया नमस्कार, और ये बहुत ही लाजवाब सॉन्ग था फिल्म दिल का, तो फरमाइशकर्ता को दिल से धन्यवाद है इतना अच्छा गाना सुनवाने के लिए।
1: ओके जी, और ये फिर वैसे लेते क्या कहते हैं,
2: बीरबल बघेल ग्वालियर वाले जी का ओ प्रिया प्रिया गाना मुझे बहुत पसंद आया, और उससे ज़्यादा पसंद आया उनका कमेंट, बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से उन्होंने बोला है। धन्यवाद, मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा से।
1: ओके, अगला जो डिमांड है ये पूजा भास्कर जी की, और पूजा भास्कर जी एंजॉय कीजिए अपने।

0: प्रिया प्रिया वाला गाना मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और बीरबा बघेल लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत पसंद है इन पूजा भास्कर जी का। राजीव त्वरजी लिखते हैं कि पूजा भास्कर जी की डिमांड, अनसुना गाना मुझे सुनने को मिला, उनको धन्यवाद देते हैं। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
1: और ये छोटी सी बच्ची आई है दीक्षा, और ये आपसे कुछ बोलना चाहती है, बोलो।
2: अमन भैया तुम्हारे गाने मुझे अच्छे लगते हैं, मैं डांस भी करती हूँ। अच्छा। मेरा नाम है दीक्षा केवल।
0: अच्छा जी।
1: हाँ, तो ये आपके गाने सुनती है और बहुत डांस करती है, और इसने अपना नाम बता दिया है, दीक्षा केवट। धन्यवाद अमन जी, आपके प्रोग्राम हमारे बच्चे बड़े सब सुनते हैं, मेरी दुकान पर जो भी आता है। धन्यवाद, मैं दीपक गायकवाड़ सीनी माला मध्य प्रदेश से।

0: बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, थैंक यू।
1: ओके, और यहाँ पे इनकी विकास गडकरी जी लिखते हैं, आज के सभी गाने एक से बढ़कर एक नए पुराने सुनने को मिला, मजा आ गया है। और विष्णु जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमर सर जी, आपने मेरा भी गाना प्ले किया था। राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये पूजा भास्कर जी की डिमांड मुझे बहुत पसंद आई है, और ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं।
2: रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे, बहुत ही शानदार। आदरणीय अमन सर जी, एक बार फिर आपको और प्यारे श्रोता मित्रों को बीरबल बघेल का सादर नमस्कार। भाई मित्रों, मैं एक बार आप सभी को फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक से एक शानदार फीडबैक मेरे द्वारा पसंद किए गए गाने को सुनकर दिए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बीरबल बघेल, भितरवार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से, शुक्रिया।
1: ओके, अगला जो डिमांड है वो आज के जो यानी शिवम जी बने थे विनर, पहले उनका गाना प्ले करता हूँ, फिर आता हूँ।
3: मैंने दिल में छुपाया तुम्हें धड़कन बना के,
1: क्या बात है, क्या बात है।

0: अमन भैया, मेरी दुकान पर एक और कन्या आई है, मतलब बालिका, ये भी आपसे कुछ कहना चाहती है, बोलो बेटा।
1: अमन भैया, आपके गाने मुझे बहुत पसंद है। आप, मैं शिवनी वाला से बोल रही हूँ, मेरा नाम है खुशबू केवट।
0: ठीक है, ये खुशबू केवट थी, धन्यवाद। मैं दीपक गायकवाड़, शिवनी वाला, मध्य प्रदेश से।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और राहुल पासी जी लेते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है, और प्रियंका जी लेते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है ये वाला, और राहुल और रिपिकू राय जी लेते हैं कि मेरे दिल ने वाला गाना ये है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और मनीषा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम। आप इन कौन सी मनीषा है जरा मुझे बताएंगे प्लीज। और बिल्कुल भगत जी लेते हैं कि बेहतरीन नगमा चल रहा है। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करूंगा, राजीव तिवारी जी का सुनना चाहते हैं, दिल पागल दीवाने है।

वेलकम है कॉमेडी हॉटस्टार जो दीवाना बना दे और पूजा भास्कर जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए और बीरबल भगत जी लिखते हैं वाह क्या खूबसूरत गाना है मजा आ गया सुन के और राहुल पासी जी लिखते हैं कि दिल पागल दीवाना है गाना मुझे बहुत ही पसंद आया। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ ये मनीषा जी का, मनीषा जी सुनना चाहती हैं हे सुना एंजॉय कीजिए।

का मैं कहूँ रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे और राजीव त्यागी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए दोस्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं फिर देने के लिए और पीकू राजी लिखते हैं कि दिल पागल दीवाना है गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है और गजानन जी लिखते हैं कि मनीषा जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है और बीरबल बघेल जी लिखते हैं कि मनीषा बहन जी का गाना मुझे शानदार लगा है जी थैंक यू कहा ओके थैंक यू मनीषा बहन जी ओके अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो अरिजीत सोनी जी का है और अरिजीत सोनी जी एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

वेलकम बैक। और यहाँ पे शिल्पा बैजी के बहुत ही बढ़िया गाने सुनने को मिल रहे हैं, बहुत मजा रहा है। सभी की फरमाइश लाजवाब है। वीरपाल बघेल लिखते हैं कि बेहतरीन सॉन्ग सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। राजेश बैजी लिखते हैं कि हमारे सुना के गाना बहुत अच्छा लगा है। और मनीषा जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। अगला जो डिमांड है वो कायनात जी का है, और कायनात जी लिखते हैं कि ये स्पेशली डेडिकेट है उनके हार्ट बीट एंड एमडी ताहिर जी को। वहाँ पे लिखते हैं कि जब से ये लिखते हैं कि जैसे बारिश की वो पहली फुहार, और जैसे जैसे वो किसी मासूम दिल का प्यार, और किसी का मन और मूड बदल सकता है, वैसे ही आपसे मिलने का इंतज़ार काफ़ी खूबसूरत होता है। ये लाइन यानी कल के लिए थी, जब आपको मैंने बहुत मिस किया। तो एमडी ताहिर जी स्पेशली डेडिकेट ये आपको गाना है, एंजॉय कीजिए और जरूर फीडबैक दीजिएगा।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना। मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं बहुत सारे और बहुत सारे भाई बहुत पहला तो ये
1: ऑल दिस सॉन्ग इज वेरी बेस्ट नाइट सॉन्ग फॉर रेडियो हॉट स्टार। थैंक यू अमन सर जी, आत्माराम पाटिल।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी आत्माराम पाटिल जी। और हमारे नंदनी मालिक जी की गाना बहुत ही प्यारा है। अच्छा, और सत्येंद्र सिंह जी लिखते हैं कि सर जी मैं आपके प्रोग्राम से जुड़ने के लिए बेताब था, मैंने गाना सुना है। अच्छा, अब इस समय भाई कैसे क्या है क्या कहूँ मैं, ये आज के थीम पर नहीं है, अगर होता तो मैं जरूर प्ले कर देता। ओके ओके, फिलहाल मैं कोशिश करूँगा। मनीषा जी लिखते हैं कि मेरा सनम सबसे प्यारा है गाना, मुझे अच्छा लगा है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। गजानंद जी लिखते हैं कि मेरा सनम सबसे प्यारा है, बहुत ही लाजवाब गाना है। और राजीव चौधरी जी लिखते हैं कि मेरा सनम सबसे प्यारा है, सबसे सुपरहिट गाना भी है और मजा आ गया सुनकर। बीरबल बघेल जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार फरमाइश है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। विकास गडकरी जी लिखते हैं कि मेरा सनम सबसे प्यारा है, गाना भी बहुत बढ़िया है। ओके, और ये फीडबैक सुन लेते हैं।

0: थैंक यू,
1: वेलकम। और मैंने तो कह दिया था कि अब मैं मिलाश गाना प्ले करने वाला हूँ, तब तक हमारे प्रमोद जी ने अपना भी डिमांड भेज दिया है। माय गॉड, आप लोग मतलब चाहते हैं कि मैं यहाँ ना जाऊँ बताइए, क्योंकि मुझे इधर बारिश हो रही है, बारिश में भींग कर ही जाना पड़ेगा, मुझे कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है। ओके, और रोहन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका रोहन जी। और ओके ओके, और प्रमोद कुमार लिखते हैं अगला जो आप गाना है। ओके, अगला जो डिमांड है मैं प्ले कर रहा हूँ, राहुल राहुल।

ताजमहल छोड़ जाएंगे, दौलत न कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे। तू मां जितनी चाहे हमारी हंसी उड़ाओ, रोता हुआ मगर तुम्हें कल छोड़ जाएंगे। जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर

0: नहीं पहुंचा।
1: जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता,
2: जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता।
1: मायूस मेरे दर से सवारी।

0: वैसे गाना बहुत ही लंबा है, मैं नहीं प्ले कर पाऊंगा उतना ज्यादा, उसके लिए आई एम सॉरी। और यहाँ पे बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं और मीना जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, लेकिन बहुत देर करती हुजूर आते आते। राजीव जी लिखते हैं कि रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बने, थैंक यू सो मच। और प्रियंका जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
1: मेरा

0: बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, थैंक यू।
1: वेलकम जी आपका भी, और राहुल पासी जी लिखते हैं कि धन्यवाद अमन सर जी गाना प्ले करने के लिए, और सत्येंद्र जी लिखते हैं कि वह क्या मस्त गाना चल रहा है अमन जी, मजा रहा है हम भी सुन रहे हैं जी, वेलकम है आपका। विकास गदकरी जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद बढ़िया बढ़िया पसंद सुनवाने के लिए, और रोहन जी लिखते हैं कि ओके और ओके। फिलहाल अगला जो डिमांड मैं प्ले करूंगा, आखिरी डिमांड ही मैं कहूंगा शायद इसको, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं प्ले कर पाऊंगा, सभी के लिए आई एम सॉरी कहूंगा, यानी कि प्रमोद जी का, इनका मैं गाना प्ले कर रहा हूं, और एंजॉय कीजिए इस गाने के बाद, और इसी गाने के से मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। तो मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब बखैर, बाय बाय।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

लो कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। भैरो बिकम्स बैरन एंड बैरन बिकम्स भैरो बिकॉज दे माइंड द वेरी नैरो।

0: वैसाय तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: गारे गारे
1: गारा पड़ा जी
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल
0: गारे गारे
1: ये अम्मा को बटका
0: गारे गारे
1: ये सूर की तरह जी ये सूर ये इन्ना आया है तो

0: घोड़ा चतुर
1: एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला। गा
0: एक चतुर नार करके सिंगार,
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार,
0: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात,
2: अपने ही जाल में फंसत जात,
0: हम मरत